0: मैं क्या सिर जिहा पट्टी जांदा ला लैने घुट।
1: किदां वे हरदयाल सिंह, अज तू किदां मैनू याद कर लिया भी? आ भी आ, कुछ नहीं कहिंदा ए।
0: बंता लै इहनू। अज जे जी कोई प्रोग्राम लगदा भी।
1: हाँ जी, नाइट क्लब च आ, रात नू जाणा।
0: चल ठीक आ, मैं भी नाल ही जाऊ।
1: नाल जाना तां थोड़ी जिही कलोन ला ला।
0: लिया, ए वी ला लैने आ घुट।
1: ओ देसिया पीण वाली थड़ो, सेंट आख्या तैनू।
0: ओ बाच बाच, ठहर जा। ओहो, हां गड्डी हुण नवीं लई आ।
1: किथे भरावा, छत लाई है।
0: ओहो, हुण छत नूं मुड़ के किवें जोड़ेगा?
1: ओ तू ना फिकर कर बेयारा।
0: ओ बल्ले बल्ले भई, तेरा सूट बहुत सोहना। ए किन्ने कदा आया?
1: 5000 डाले दा सूट, 800 दी जुत्ती, 700 दियां ऐनकां।
0: ओहो, ला लो साहब।
1: 40,000 दे सारे गहने, 25,000 दी घड़ी। हां ते सच, 2.5 लाख दी गड्डी।
0: अच्छा, इनू अंग्रेजी च कहंदे आ भाई सूटेड एंड बूटेड।

0: कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
1: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
2: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
2: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
3: Official media partner, Sunrise Radio.
4: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

Welcome back after this beautiful song. Welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM. आप सुन रहे हैं right now. मेरा नाम है अभी और आज सुबह 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. Welcome to this beautiful start of the weekend. काफी सारे beautiful songs मैं सिर्फ आपके लिए play करने वाला हूँ, आपके लिए dedicate करने वाला हूँ. So stay tuned with me.

वेलकम बैक आफ्टर येट अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है एबी एंड ऑफ कोर्स 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा। मतलब सनराइज रेडियो आप काफी सारे मीडियम के थ्रू भी सुन सकते हैं, आई होप आपको पता है। वेल डैब के जरिए आप सुन सकते हैं इन मैनचेस्टर, एट द सेम टाइम दुनिया के किसी भी कोने में आपने सिर्फ हमारा ऐप डाउनलोड करना है एंड देन देयर यू गो, इंटरनेट के जरिए आप कहीं भी सुन सकते हैं। ऑल्सो हमारी वेबसाइट है ना, सो www.sunriseradio.fm पे लॉग इन कीजिएगा, सारे अपडेट्स अपकमिंग इवेंट सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं। एट द सेम टाइम रेडियो का लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। सो कीप दैट इन माइंड एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

वेलकम बैक आफ्टर द क्लासिक फ्लैशबैक। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि इन गानों को ना कोई भी नहीं बीट कर सकता, इसीलिए कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यार, काफी एंजॉय किया मैंने और आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। Well, right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news और the beam, beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा। So stay tuned with me. I'll see you on the other side.

0: इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Sheffield Miller CIC in association with Eventmaster International presents DeciFest Sheffield Miller 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August 2026 from 12 till 8 p.m. for the biggest South Asian festival in South Yorkshire. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Miller shopping featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramin Sandu, Summer Blake, Sasovan Sarkar, Dolls Royce, Roma Dance, and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there. Hosted by Sunrise Radio's Amit Soda. Radio partner, Sunrise Radio.
3: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. A Sunrise Radio hit of the hour.

वेलकम टू येट अनदर ब्यूटीफुल हिट ऑफ द आवर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ। इस गाने को अपने पसंद किया होगा ऐसी मैं आशा कर देता हूँ। मेरा नाम है एबी एंड ऑफ कोर्स 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और इस आवर में भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपका मनोरंजन किया जाएगा, अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम।

Once again, welcome back after yet another beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. आशा करता हूँ कि इस वीकेंड की शुरुआत आप काफी एंजॉय कर रहे हैं. मतलब रिलैक्स भी करना चाहिए, रेस्ट भी करना चाहिए, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम वीकडेज में नहीं कर सकते, काम के टाइम पे नहीं कर सकते. सो आई थिंक एक लिस्ट अगर हम बनाते हैं ना, छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे काम हो सकते हैं, अगर उन कामों को एक स्मॉल स्पेन ऑफ टाइम में अगर हम फिनिश करते हैं ना, तो पूरे हफ्ते के लिए आई थिंक हमें वरी करने की जरूरत नहीं. जस्ट अ थॉट. एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

Welcome back after the classic flashback only on Sunrise Radio 103.2 FM. Nothing like the golden oldies. But right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news और तभी इन beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. कहीं ना आप जाएगा. I'll see you on the other side of this hour. Stay tuned.

0: इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

इस आवर के तीसरे घंटे में आपका स्वागत है एंड वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. ऑफ कोर्स मेरा नाम है अभी और आज 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. दिस इज द सेकंड लास्ट आवर ऑफ माय शो. एंजॉय कीजिएगा इस वीकेंड की शुरुआत को, इस सुबह की शुरुआत को और सनराइज रेडियो पर प्ले हो रहे हैं इन गानों को. द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 01274735043.

Welcome back after this beautiful song, only on Sunrise Radio 103.2 FM. काफी मधुर गाना था यार, I just loved it. Only on Sunrise Radio 103.2 FM पर आप सुन रहे हैं इन हसीन गानों को. मेरा नाम है Abby and of course 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. अगला गाना सिर्फ आपके लिए है, dedicated.

0: इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: The Manchester Mega Mela is back on Saturday 1st and Sunday 2nd of August at Platfields Park, Rochow, Manchester from 12 noon till 9pm on both days, featuring performances by B2, Apna Sangeet, Summer Blake, Ramit Sandhu, Lemba Husseinpuri, Circus Raj, Rajasthan Brass Band, Zahir Abbas Kawal and Party, Hobajan Dalwar, Roach Killer and many more artists. Main stage hosted by Sunrise Radio with a fun fair, kite flying, henna and face painting, children's corner, Asian bazaar and Asian food. Free entry for the whole family. TV partner B4U Music. Radio partner Sunrise Radio.
3: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio, hit of the hour.

शो के आखिरी घंटे में आपका स्वागत है। सनराइज रेडियो 103.2 एफएम ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं राइट नाउ। हीरो ऑफ द आवर के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर। मेरा नाम है अभी, दिस इज द लास्ट आवर ऑफ दिस शो। कहीं ना जाइएगा, काफी सारा ब्यूटीफुल म्यूजिक आएगा इस आवर में भी। द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

Welcome back after this beautiful song. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This beautiful song है जो मुझे भी बहुत पसंद आ गया. मतलब ऐसे गाने होते हैं कि सबको कभी कभी पसंद नहीं आते हैं, पर you know, you just started falling for this song. So this was one for me. और इसी नोट पर अगला गाना सिर्फ आपके लिए डेडिकेट किया.

वेलकम बैक टू द क्लासिक फ्लैशबैक वाली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था। काफी मजा आ गया मुझे और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी काफी मजा आ गया इन गानों को सुनकर। वेल राइट नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो क्योंकि द नेक्स्ट प्रेजेंटर विल बी विद यू। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, योर लव्ड वंस। और मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर। टिल देन अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखिएगा, उनका हाल चाल पूछिएगा। गुड बाय।

0: हजारों दुआओं मोहब्बतों चाहतों और खुशियों के लाजवाल खजाना की ख्वाहिश के साथ नाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम सुनने वालों को नाहिद चट्ठा की तरफ से हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी मॉर्निंग एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा दिन है, ना गर्मी है ज़्यादा ना सर्दी है, और लगता है कहीं कहीं बल्कि फोरकास्ट में है कि शाम में कहीं पे बारिश भी है। तो अब इतने दिनों के बाद तो हम बारिश को खुशाइंद ही बोलेंगे। वो कहते हैं ना, सहमी हुई है झोंपड़ी बारिश के खौफ से, सहमी हुई है झोंपड़ी बारिश के खौफ से, महलों की आरजू है कि बरसात तेज हो। तो जी, अब यहाँ पे तो इंग्लैंड में जब ज़्यादा बारिशें होती हैं फिर हम भी तंग पड़ जाते हैं, लेकिन अब काफ़ी अरसे से बारिश नहीं हुई एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। पौधे गार्डन्स भी हमारे लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो द वेदर इज़ डूइंग वेल, क्वाइट वेल। आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर डाउन हो रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और सर्दी भी नहीं है। अब शिकायत करने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि यह ह्यूमन नेचर है ना, जब सर्दी होती है तो सर्दी सर्दी सर्दी की हम शिकायत करते हैं और गर्मी होती है तो फिर गर्मी की शिकायत करते हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं है। सामीन, आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 100.6 FM और 103.2 FM पर अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर। डेप पर जनाब आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, कीथली में, इल्कली में, स्किप्टन में, लीड्स में, हैलिफैक्स में, मैनचेस्टर में, ईस्ट लंका शहर में, यानी कि ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन एंड एकरिंगटन एंड मिल्टन कीन्स में। जनाब हम डाबी में भी जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप इन सब स्टेशंस पे हमें नहीं सुन पा रहे हैं तो आप हमें सुन सकते हैं एप्पल ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारी वेबसाइट www.sunriseradio.fm या फिर www.sunrise.radio। जी सामीन, ये तो है हमारा मॉर्निंग का इंट्रोडक्शन और इसके बाद हम जनाब बात करते हैं, जैसा कि होता है हमारा ये सैटरडे का प्रोग्राम। मैं आपके साथ होती हूँ सैटरडे, एवरी सैटरडे फ्रॉम 11 to 2, 11 से 2 बजे तक। तो इसमें हमारे फर्स्ट 2 आवर्स होते हैं गीतों के और उसके बाद हमारे गीतों के साथ साथ हम कुछ पोइट्री आपसे शेयर करते हैं, आपकी टेलीफोन कॉल्स होती हैं, आपसे अच्छी अच्छी सी बातें होती हैं और वो 2 घंटे अच्छे से गुजर जाते हैं। लेकिन जो इस प्रोग्राम का मेरा फेवरेट सेगमेंट होता है वो होता है डिस्कशन आवर। सो जो डिस्कशन आवर होगा आज का, उसका टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट आवर में डेफिनेटली बता दूंगी। आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स डेफिनेटली अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन अगर आप डिस्कशन में लाइव कुछ नहीं कहना चाहते ड्यू टू एनी रीज़न, आई रियली अप्रिशिएट दैट एज वेल। मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, क्योंकि जो मेरे टॉपिक्स होते हैं वो लाइफ टचिंग टॉपिक्स होते हैं, हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते या कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे वो रिकग्नाइज्ड हो पाए और वो एनोमिनसली बात करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली मैं उन कॉल्स को भी लेती हूँ और उनका पैगाम आप तक पहुँचा देती हूँ। तो जनाब हमारे आज का जो पहला गीत है हिट ऑफ द आवर, डॉक्टर सतेंद्र सरताज की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत है पंजाबी, इसी से स्टार्ट करते हैं और फिर बात होती रहेगी, गीत होते रहेंगे और यही 3 घंटे हवा के दोष पर एक साथ हम जिंदगी के ये 3 घंटे खूबसूरत बनाते हुए गुजार देंगे। मेरे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो। बढ़ते हैं हिट ऑफ द आवर की जानिब।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8 bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: हाँ जी, बल्ले बल्ले हो गए मित्रों। जी आपने सुना जो कि हमारा हिट ऑफ द आवर गीत था, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। मैंने सोचा ज़रा बल्ले बल्ले करा के थोड़ी सी एनर्जी डाली जाए, क्या ख्याल है? वाह जी, टेलीफोन कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टेलीफोन कॉल। आपने कहा है कि आपके लिए पंजाबी पोएट्री आपको डेडिकेट की जाए। डेफिनेटली वाजिद, आई एम गोइंग टू रीड दिस पंजाबी पोएट्री फॉर यू, और उम्मीद है सब लोग भी इंजॉय करेंगे इस पंजाबी पोएट्री को। तो पंजाबी गाने के बाद वैसे भी एक पंजाबी पोएट्री तो बनती है ना फिर। तेरे कोलों सजना कादे ओले ने, तेरे कोलों सजना कादे ओले ने, मेरे कोल ते अज भी दर्द पड़ोले ने। पड़ोला वो होता है ना जो बड़ा सा होता है गांव में, गांव के घरों में, जिसमें चावल या अनाज या गंदम डालते हैं, वो बड़ा सा छत्ता, कितना बड़ा सा होता है। तो कहते हैं कि तेरे कोलों सजना कादे ओले ने, मेरे कोल ते अज भी दर्द पड़ोले ने। नेहर घर विच केड़ा दीवा बाल गया, केने आके चानन बूहे खोले ने। मेरिया खाबां दे विच बेला वसदा है, कन्ना दे विच वजदे अज भी ढोले ने। वेले पावें किन्नी औकड़ दित्ती है, मेरे पैर ना धरती उत्ते डोले ने। अज भी गोरी तोड़े कच दी चूड़ी नू, हाय अज भी गोरी तोड़े कच दी चूड़ी नू, बारी दे विच रखे रीझ पटोले ने। अचन चीचे ते ओदियां यादा आ गईयां, हस के मिलनी कर ली अकरम पोले ने। यानी कि अचानक से उसकी यादें आ गईं और फिर उसने हंस के उनको, उनसे मुलाकात कर ली। मिलनियाँ करते हैं ना पंजाबी में, हंस के मिलनी कर ली अकरम पोले ने। ये अकरम बाजवा साहब की पोएट्री है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वाजिद भाई, मेरे पास एक और बहुत अच्छी सी पंजाबी पोएट्री है, वो भी मैं आप प्रोग्राम के दौरान आपको सुनाऊँगी, सुनते रहिएगा। और ऐसा करते हैं कि हम बढ़ते हैं इस पोइट्री के बाद अपने टाइम चेक की जानिब। टाइम चेक के बाद हमारा होगा एडवर्ट ब्रेक, और एडवर्ट ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी जनाब, साड़ी स्टूडियो दियां घड़ियां दस रहियां ने, केस टाइम हो गया है 11:14, यानी कि 11:14, 14:11, नेली 11:15। जनाब, इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी एडवर्ट ब्रेक की जानिब। एडवर्ट ब्रेक के बाद आपसे होती है दोबारा मुलाकात एक खूबसूरत से गीत के साथ। हमारे साथ रहिएगा।

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
2: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
4: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।
5: सुमन, वेलकम बैक। कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर है बहुत ही खूबसूरत सोनू निगम के गीत के साथ। एंजॉय कीजिएगा।

अरे वाह, गल्ला गुड़ियां, गल्ला गुड़ियां तो बहुत ज़रूरी है ना। आपका ताल्लुक ही कैसा अगर आपके पास गल्ला गुड़ियां ही ना हो। यही तो बात होती है दोस्ती की, जानने वालों की। और कहते हैं ना कि दोस्त जो होते हैं हमारे करीब, हम उनसे बात करते रहें तो अच्छा होता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कॉमन लाइफ में, हमें जहाँ पे ज़रूरी बात करनी है ऑफिस में, या जो नेसेसरी कम्युनिकेशन, हम शॉपिंग करने जाते हैं तो, या हम किसी से बात करते हैं, कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो किससे बात करते हैं, दीज आर सुपरफिशियल थिंग्स जो कि बहुत ही सतही लेवल की बात होती है। जो ज़रूरी होती है वो करके वापस आ गए। लेकिन जो असल गल्ला गुड़ियाँ जो होती हैं वो होती हैं दोस्तों के साथ, ऐसे करीबी रिश्तों के साथ जिन पे आपको पूरा यकीन हो। ये आपके स्पाउस का रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपके सिबलिंग्स के साथ भी हो सकता है, अपने पेरेंट्स का टेम्प्रेरी, बिकॉज उस तरह से वो आपके साथ हमेशा नहीं रहते हैं, तो आपकी औलाद के साथ किसी हद तक। लेकिन जो दोस्त हैं या आपके स्पाउस हैं या सिबलिंग्स हैं, उनका लॉन्ग टर्म रिलेशन माना जा सकता है। तो उसी तरह उन्हीं के साथ आपकी गल्ला गुड़ियां बहुत ज़रूरी हैं, वरना इंसान चुप रह जाता है। वो एक मेरी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड है, जूनियर है मुझसे, और वो लिखा करती हैं। उनका नाम गुड्डू है और वो अभी दुबई में बिज़नेस कर रही हैं। लेकिन उन्होंने, उनकी बुक आई थी और उसमें उन्होंने लिखा कि बरसों चुप रही हूँ मैं। यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल उन्होंने बात ही नहीं की। उन्होंने बात की है, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल किसी से ज़रूरी बात करनी पड़ती है, तो बस। लेकिन उन्होंने दिल की बात नहीं की, गल्ला गुड़ियां नहीं की। तो कहती हैं, बरसों चुप रही हूँ मैं, मुझे कहना नहीं आता, यानी कि अपने दिल की बात कहनी नहीं आती। बरसों चुप रही हूँ मैं, मुझे कहना नहीं आता, जो कहना सीख लेती हूँ तो कोई लफ्ज़ नहीं भाता। जो लफ्ज़ों को समेटूं तो मैं बातें भूल जाती हूं कि बरसों चुप रही हूं मैं, मुझे कहना नहीं आता। अगर हम बरसों चुप रहेंगे, अपनी दिल की बात, अपनी बातें किसी अच्छे दोस्त से, अपने स्पाउस से, अपने सिबलिंग से, या कोई भी आपके करीब है, आपके बच्चों में से या आपके पेरेंट्स में से या कोई भी है, उनसे आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप लफ्ज़ भूल जाएंगे। लफ्ज़ समेटेंगे तो बातें भूल जाएंगी। तो गुड्डू ने बहुत ही प्यारी बात लिखी कि बरसों चुप रही हूँ मैं, मुझे कहना नहीं आता, जो कहना सीख लेती हूँ तो कोई लफ्ज़ नहीं भाता, जो लफ्ज़ों को समेटूँ तो मैं बातें भूल जाती हूँ कि बरसों चुप रही हूँ मैं, मुझे कहना नहीं आता। चलो छड्डो जी, असी एक गीत सुनने आते, इंजॉय करने

0: जी हाँ समीन, वेलकम बैक। आपने ये गीत सुना, देखो ज़रा देखो बरखा की झड़ी। मैंने कहा अभी बारिश शुरू हुई नहीं है, हम पहले से ही बारिश के, बरखा के, झड़ी के, बूंदों के इस्तकबाल का इंतज़ाम कर लें, क्या ख्याल है? तो ये गीत जनाब चौधरी मुजफ्फर जी की तरफ से उनके तमाम दोस्तों के नाम था। चौधरी मुजफ्फर जी, बहुत शुक्रिया आपकी टेलीफोन कॉल का। आपसे बात करके हमेशा की तरह अच्छा लगा। आपके तमाम दोस्तों के नाम ये वाला गीत, देखो ज़रा देखो, ताकि सारे दोस्त मिल के जिस तरह बचपन में बारिश में भीगा करते थे, भीगें और इंजॉय करें। तारिक भट्ट जी, आपसे बात करके भी बहुत बहुत अच्छा लगा, और आपसे बात करके आपने हमें इतने अच्छे अशार सुनाए, और आपके पढ़ने का अंदाज़, आपकी बात का अंदाज़, क्या बात है जी। अल्लाह ताला आपको और ही अच्छा सुखन अता फरमाए और इसकी सुखन की रोशनी बढ़ाए, आमीन सुमा आमीन। आपके लिए गीत लगाएंगे हम, जो हमारा गीत होगा फ्लैशबैक गीत, पुराना गीत जी आपके लिए हम लगाएंगे। तो और जी, बात हुई भाई चौधरी रुखसार जी, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। आप हमें बता देते हैं, आप हमारा शो सुन रहे हैं, सानू भी लगता है कि चलो कोई है, अच्छे लोग बैठे हमें सुन रहे हैं, असी एवं नहीं आके थे, वो लफ्ज़ अच्छा नहीं है जो बोलने लगी थी, खुद ही समझो करके चले गए हैं। नहीं, हम तो आपके लिए ही आते हैं और आपके लिए ही टाइम निकालते हैं। अगर आपको शो पसंद आता है, आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं, हमारी पोइट्री अच्छी लगती है, गीत अच्छे लगते हैं, तो मेहनत वसूल हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया एटलीस्ट हमें ये फ़ोन करके बताने के लिए भी कि आप मौजूद हैं और आप हमारे साथ हैं, और आपको शो पसंद आ रहा है और आपको बातें अच्छी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए जनाब। अब ऐसा है कुछ यूं कि टाइम इतना नहीं है कि आपके लिए अगला गीत प्ले किया जाए, और एक मिनट के बाद जो हमारी हो जाएगी ब्रेक, और हमें आपको टाइम भी बताना है, तो ऐसा कर लेते हैं, छोटी सी शायरी सुनाती हूँ, फिर उसके बाद टाइम और उसके बाद ब्रेक। तो शायरी कुछ यूं है, मुझे तुम छोड़ मत देना, हजारों दूरियां आएं, बहारें आके खो जाएं, मेरा चेहरा भुला देना, मेरी यादें बचा लेना, जो लम्हे दर्द देते हों उन्हें बेशक भुला देना, जो लम्हे दर्द देते हों उन्हें बेशक भुला देना, जो लम्हे आस देते हों उन्हें दिल से लगा लेना, कहीं भी दूर रह लेना, बहुत मजबूर रह लेना, मगर ताल्लुक तोड़ मत देना, मुझे तुम छोड़ मत देना। उम्मीद है आपको ये अशार पसंद आए होंगे। बढ़ते हैं टाइम चेक की जानिब।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि ठीक हुआ जाते हैं 11:45, यानी कि 11:45 पौने 12 हो गए ना जी। चल बढ़ते हैं हमारे कमर्शियल ब्रेक की जानिब, उसके बाद फ्लैशबैक गीत, और उसके बाद आपसे मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ, ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है, जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा, और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
3: एशिया सुपर स्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
4: Have you noticed the way fans shout at football matches?
5: Oh, wake up!
4: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
6: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

जी सामेईन, जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, क्या बात है। आपने ये गीत सुना, पुराना गीत, उम्मीद है पसंद आया होगा। इस दौरान हमारी बात हुई जनाब महबूब इलाही साहब से, बहुत बहुत शुक्रिया टेलीफोन कॉल करने के लिए और प्रोग्राम को सराहने के लिए, मेरी आवाज़ को सराहने के लिए। हाँ जी, आवाज़ चंगी होएगी तो फिर इससे वास्ते इतने रखा होया ना उन्होंने मनु, अदरवाइज तो मनु कट दें दे। थैंक यू सो मच। आप पसंद करते हैं, आपके कान अच्छे हैं, आप सुनते अच्छा हैं, ये तो अच्छी बात होती है कि आप किसी को, किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से परसीव करते हैं। थैंक यू सो मच। तो जीत कौर आंटी जी, तुहाडी कॉल मिस हो गई, पहले भी तुसी एक दिन मैनू कॉल की थी, तुहाडी कॉल मिस हो गई सी, फिर तुसी मुड़ के फ़ोन ही नहीं किया। प्लीज़ मैनू वापस फ़ोन कर लेना जदों मैं दोबारा गीत लगा के जावांगी। तो तुसी हुन मैं इस टाइम भी लाइन ते हाँ, किसी ने होल्ड कराया, तो तुसी मैनू जदों मैं अगला गीत लगावांगी, जदों खबर आन गया ना, तुसी उस टाइम मैनू फ़ोन कर लेना, फिर मैं तुहाडे नाल गल कर लाँगी, ठीक है ना। तो मैं फिर तुहाडे वास्ते एक स्पैशल पोएट्री भी लैके आई हाँ पंजाबी दी, वह भी मैं तुहानू सुनावांगी नैक्सट आवर विच, ठीक है ना जीत कौर आंटी जी। तो तुसी मैनू बाद दे विच दोबारा ज़रूर फ़ोन करना। तो समीन, अब हम बढ़ते हैं अगले गीत की जानेब, महबूब इलाही की जानेब, भाई की जानेब से तमाम उनके दोस्तों के नाम, लेकिन जो उनके दोस्त नहीं हैं वो भी सुन सकते हैं, उन्होंने कहा है सच्ची से। तो महबूब इलाही जी, आप भी इंजॉय कीजिएगा और महबूब इलाही जी के तमाम दोस्त भी इंजॉय करें।

0: जनाब हमारा हो गया ये गीत ख़त्म, हमारी बात हुई जनाब नाही जी से, और किससे बात हुई, बहुत ही खूबसूरत अपनी जीत कौर आंटी नाल। जीत कौर आंटी जी, थोड़ा फोन ही कट हो गया सी, तुसी गल कर रहे सी। चलो कोई गल नहीं, फिर तुसी फोन कर लेना, ठीक है ना। ते हुन साड़ियाँ खबरां दा टाइम होने वाला है, खबरों के बाद असी तुहानूं पंजाबी दी चंगी जी पोएट्री सुनावांगे। और वाजिद ने बहुत बिगनिंग में कहा था कि नूर जहाँ की आवाज़ में गीत, तो मैं कोशिश करूँगी कि हिट ऑफ तावर में नूर जहाँ की आवाज़ में आप लोगों को गीत सुनाया जाए। और नहीं जी, आपके लिए भी अच्छा सा गीत ढूँढूँगी, और जीत कौर आंटी जी ताडे लिए भी, सारे लिए, सब के लिए। तो ऐसा करते हैं, हम बढ़ते हैं खबरों की जानिब, मिलते हैं नेक्स्ट आवर में खबरों की बात। अपना ख्याल रखिएगा इतनी सी देर के लिए भी।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
2: Center at midday. 200,000 people have been evacuated from their homes across southern Europe due to out-of-control wildfires. In France, a big blaze is heading towards the city of Bordeaux. Meanwhile, in Spain, blazes have been spreading towards Madrid. Spain's Prime Minister Pedro Sanchez has been visiting affected areas. He says calmer weather's offered some hope of containing the flames.
3: We have a window of opportunity this weekend to fight the fire, and that is why we're going to dedicate and allocate a significant portion of our resources to that effort.
2: Meanwhile, in the UK, a wildfire in the Cairngorms has been called a very serious situation by First Minister John Swinney. Homes around Nethy Bridge were evacuated last night as a precaution after changes in wind conditions made the blaze spread more quickly. Police have launched a murder investigation after a teenage boy died following a stabbing in Luton. Two other teenagers have been arrested on suspicion of violent disorder. India's education ministers resigned after mass youth protests by what's known as the cockroach movement. The latest demonstrations kicked off after alleged leaks of exam papers for some of the country's most competitive entrance tests. The movement gathered momentum last week after an activist was taken to hospital and ended a 26-day hunger strike. Donald Trump's joked he'll run for president for another term.
4: My intention to run for a fourth term as President of the United States. Now, I won three times, did very well the second time, by the way. It's a rigged election, but we'll have to talk about it.
2: He was speaking overnight at the White House Correspondents' Dinner in Washington, D.C., which was rescheduled after a gunman interrupted the original event in April. The president also said Iran wants to secure a peace deal and confirmed Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu will visit the U.S. next week. And heatwave conditions are coming back for parts of England and Wales this coming week. Temperatures are expected to peak at 35 degrees Celsius in some areas. That's the latest.
0: वेलकम बैक समीन, कैसे हैं आप, कैसा लगा खबर सुनी कि हीट वेव दोबारा आ रही है। मैं अभी खुश हो रही थी कि मौसम अच्छा होने लगा है, मैं तो गाने भी लगाने शुरू कर देते थे, पानी वाले, बूंदों वाले, बरसात वाले, तो एक ही कि दोबारा से हीट वेव आने वाली है। कितने खबर गलत थे नहीं, कोई पता थे करे। समीन, आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो, मैं हूँ नाहिद चट्ठा आपकी मेज़बान। मेरा प्रोग्राम आपके साथ होता है 11 से 2 एवरी सैटरडे सनराइज रेडियो पर। सनराइज रेडियो आपका अपना रेडियो स्टेशन जो कि आप सुन सकते हैं 100.6 एफएम पर और 103.2 एफएम पर अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर। इसके अलावा डेप पर आप सुन सकते हैं, ब्रेडफोर्ड में, कीतली में, इल्कली में, स्किप्टन में, लीड्स में, हैलिफैक्स में, मैनचेस्टर में, ईस्ट लंकाशायर यानी कि ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन और मिल्टन कीन्स में। डार्बी में भी हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। एप्पल ऐप स्टोर पर या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट हमारी www.sunriseradio.fm या फिर www.sunrise.radio। जी सामीन, ये तो है हमारा सनराइज़ रेडियो और इसका तारुफ। तो ऐसा है कि जो हमारा है हिट ऑफ द आवर गीत वो आपको मैं सुना देती हूँ नूर जहां की आवाज़ में, क्योंकि वाजिद ने मुझे पिछले आवर में फरमाइश की थी। तो ऐसा है कि एक तो ये है नूरजहाँ का गीत हिट ऑफ द आवर के तौर पे आपको सुनाऊंगी, दूसरी बात आपको बताऊंगी कि हमारा आज का जो डिस्कशन आवर का टॉपिक है वो है दोस्ती पे, क्योंकि वो कहते हैं ना दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। कई लोग कहते हैं कि मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं जी, हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं और इतने दोस्त हैं, ये है वो है, लेकिन दोस्त तो वो होता है ना कि जिससे आप दिल की बात बिला झिझक कह सकें, जिससे आपको कोई ख़तरा ना हो। दोस्त तो वो होता है ना कि वो आपके साथ भी बैठा हो और कुछ भी ना बोले तो आपको ये खुशी हो कि ये मेरे साथ है। दोस्तों वो होता है ना जो कई कितना कितना अरसा आपकी बात ना हो पाए वो अपनी ज़िंदगी में मगन है और आप अपनी ज़िंदगी में मगन है, लेकिन जब भी मिलते हैं आप मिलते हैं ऐसे जैसे कभी जुदा ही नहीं हुए थे। ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे डिस्कशन आवर में। बढ़ते हैं हिट ऑफ द आवर की जानिब।
5: द हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय सोफी ज्वेलर्स विद अ वाइड रेंज ऑफ डिजाइंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ज्वेलरी। Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 0-1274-056-014.

निगाहें मिलाकर बदल जाने वाले, हाय मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। वैसे हम ही कहते रहते हैं शिकायत होती है ना, देखो गा गा के शिकायत ही कर रही है और साथ में कह रही है कोई शिकायत नहीं है। ये उसी तरह है, तू कहते ना तेरे सामने बैठ के रोना ते दुख तेनू नहीं दसना। तो यही होती है बातें। तो हमारी बात हुई हमारे बहुत ही प्यारे लिसनर जो कि पहले कॉल किया करते थे, थोड़ा सा गैप पड़ गया, चौधरी फरियाद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। और उनके साथ उनके दोस्त हैं चौधरी दाऊद जी, वो भी बैठे हैं। तो हम आपका जो गीत है वो भी ढूंढते हैं कि अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपके लिए ज़रूर प्ले करूंगी, वो गीत मुझे भी पसंद बहुत है, तो मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम की आवाज़ में। लेकिन अभी जो गीत है मैं प्ले करूंगी नाहिद जी के लिए, मेरे लिए नहीं, हमारे लिसनर नाहिद जी के लिए। बहुत ही अच्छी लिसनर हैं, हम हमेशा फ़ोन करती हैं, याद रखती हैं, दुआएं देती हैं, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। तो उनके लिए ये गीत मैं पेश करती हूँ और उम्मीद है आप भी ये गीत पसंद करेंगे। ये गीत सुनिएगा और उसके बाद मैं ढूंढती हूँ जी चौधरी फरियाद जी तोड़ा वाला गीत, जो मैंने मिल गया था वो मैं ज़रूर प्ले करांगी, नहीं तो फिर तानू कुछ और सुना दांगी। चंगा जा, हमारे साथ रहिएगा।

0: हाँ जी, क्या देखते हो जनाब? देखो नहीं, सुनो। सुनने की ये है बात कि टाइम चेक का टाइम हो चुका है।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: इस वक्त जनाब हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं और कह रही हैं कि हुआ चाहते हैं 12:15, यानी कि 15 minutes past 12, 12:15 भी कहेंगे, 12:15 भी कह सकते हैं जी। बदनिया कमर्शियल ब्रेक दी जानेब, सुनते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद एक अच्छा सा गीत, उसके बाद दोबारा मिलते हैं।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
4: Of £7.70 for every pound spent. It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 01274735043

जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके। क्या बात है जी, क्या बात है जनाब। इस गीत के बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले गीत की जानिब। वो चौधरी फरियाद जी आपके लिए और आपके फ्रेंड चौधरी दाऊद जी के लिए वो गीत मैं ढूंढ रही हूँ, स्टिल ढूंढ रही हूँ, अभी तक मिला तो नहीं है, लेकिन उतनी देर तक आप ये गीत इंजॉय कीजिएगा। और ऐसा करते हैं कि ये गीत आपके नाम और आपके तमाम दोस्तों के नाम करते हैं, लेकिन जो आपने कहा था वो वाला अभी तक ढूंढ रही हूँ, अगर मिल गया तो मैं ज़रूर वो भी प्ले कर दूँगी। उतनी देर तक एहदेन अली गुजारा करो। मिलते हैं इस गीत के फौरन बाद। और शकील भाई बर्ली से थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल, और हमेशा जब भी आपकी कॉल होती है आप मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ मालूमात देते हैं, तो आज भी आपने बहुत ही अच्छा गीत दोस्ती के हवाले से बताया, मैं वो भी ढूंढती हूँ, और आपने जो शेर बताया वो भी जब हमारा प्रॉपर दोस्ती की डिस्कशन वाला आवर होगा ना उस पर बात करेंगे, और वो शेर भी सुनाऊँगी। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर इनपुट। बढ़ते हैं इस गीत की जानिब।

रंग रंग दा वहम निशानू वहम निशानू रंग रंग दा वहम निशानू पावे होवे काला।

दिल लग गया कोई रब जी। चौधरी बरियार जी, मैं कोई और गाना समझ के लगाया सी, लेकिन यह बहुत फनी गाना सी, बहुत फनी गीत सी। मैं समझिया कोई और सी जो मैं इसनों लाइन अप किया थोड़े वास्ते। तो आई होप कि तुहानू पसंद आया होएगा, नहीं पसंद आया तो भी कोई गल नहीं, असी तुहाडे वास्ते एक और गाना भी लगावांगे। तो गीत जड़ा है ओदा हुण टाइम नहीं है अगले गीत का, क्योंकि कमर्शियल ब्रेक आने वाली है। तो इस तरह करने हाँ कि पंजाबी की कुछ शायरी सुनाने हाँ। जीत कौर जी तुहाडे नाम, चौधरी फरियाद जी तुहाडे फ्रेंड जिहड़े बैठे ने, चौधरी दाऊद जी और जिहड़े भी मेरे पंजाबी समझन वाले ते सुनन वाले लिसनर्स ने, तमाम लोगों के नाम। वैसे जिनको उर्दू आती है थोड़ी बहुत पंजाबी भी समझ आ ही जाती है। तो ऐसा है कि कहते हैं कि हाय ओ बंदे मुकदे वेंदन, वेंदन मीन जाते हैं यानी कि काम ख़त्म होते जाते हैं। हाय ओ बंदे मुकदे वेंदन जेड़े फजर नू सरगी वेला, जोहर नू पेशी असर नू डीगर, कुफ्ता इशा नू आखण आले, सिर ते पगड़ी लम्मा कुर्ता, हाथ च सोटी तहबन आले, हर गल नाल खंगूरा देंदे, चंगियां मत्तां देवन आले, पासा सिपियां नाल खड़ेंदे, निभियां दी रुदाद सुनेंदे, चंगे कम ते शाबाश देंदे, माणिया कम्मा तो हट केंदे, जेड़े हान आखण करेंदे, सूरज वेख वक्त दिसेंदे, सूरज वेख वक्त दिसेंदे, रा कोई पिछे नाल बहा के, बांस दी सोटी इच नप के, बूएं ते नक्शा लीक के सारा, डार दहलीज वखावण आले, मंजिल ताई अपड़ावण आले, हाय ये बंदे मुकदे वेंदे। वो पुराने लोग, वो जब उसने कहा है ना कि बांस की सोटी से नक्शा, जैसे कहीं गांव में जाओ रास्ता भूल जाओ या किसी से पूछो तो फिर वो ज़मीन पे ऐसे ड्रॉ करके इस गली ते जाओ, इत्थे मोड़ो, इस तरह करो, तो वो उसकी बात कर रहे हैं कि वो बंदे अब ख़त्म होते जा रहे हैं, है ना। हाय ये बंदे मुकदे वेंदे, जड़े फजर नू सरगी वेला, जोहर नू पेशी असर नू डीगर, कुफ्ता इशा नू आखण आले। हाय, मुझे याद है मेरी दादी माँ भी कहा करती थी कि कुफ्ता वेले ए काम करना है, पेशी वेले ए होना है, पेशी वेले चलांगे, कहीं जाना होता था तो हमें नहीं पता होता कि असर पेशी है। लेकिन वो वाकई वो वाली बातें अब ख़त्म होती जा रही हैं, क्या ख्याल है जी सामिन। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बहुत खूबसूरत सा गीत होगा आपके लिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ रहिएगा।

0: हाँ जी, तेरे हाथों में अब मेरी जान है। वाह जी वाह, तोते की जान, जिन में जिनकी जान तोते में क्या होता है वो है। तो जी तारिक जुल्फी जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका गीत मैं कोशिश करती हूँ कि ज़रूर ज़रूर प्ले करूँ। अगले गीत पर जाने से पहले आपको चंद पंजाबी के अशआर सुनाती हूँ, फिर जी तारिक जुल्फी साहब जी के लिए उनके दो तमाम दोस्तों के नाम और मलिक इसहाक साहब और मिसेज इसहाक साहब साहिबा के नाम जो गीत है वो मैं, आपने जो बताया है वो डेफिनेटली मैं ढूंढती हूँ। चंद पंजाबी के अशआर सुनिए, इसको एंजॉय कीजिए और उसके बाद एक गीत एंजॉय कीजिए, फिर उसके दरमियान हम जाएंगे ढूंढने के लिए आपका एक गीत। हाँ जी, अशआर कुछ यूँ हैं पंजाबी के अगेन। पप्पू सानू तंग ना कर तू, वो कहीं पे रिक्शों के पीछे लिखा होता है ना, पप्पू यार तंग ना कर, तो उसी से लिया उसने। पप्पू सानू तंग ना कर तू, बड़े जरूरी काम लगे आ, सोची पया हुण की करिए सोची पया हुण की करिए, रोटी छोटी खा बैठे आ, लस्सी शस्सी पी बैठे आ, हुक्के दा कश भी ला बैठे आ, पूंज पांज के अंदरों बारों भांडे भी खड़का बैठे आ, सोची पए आ हुण की करिए, सोची पए आ हुण की करिए, वेख लिया ने सब अखबारां, सभी वरके थुल बैठे आ, पढ़ बैठे आ सारे अखर सारे हर्फ सुना बैठे आ, सोची पए आ हुण की करिए, कैसे कैसे असले बन गए, वड्डे वड्डे मसले बन गए, वड्डे शहर वसा बैठे हाँ, सारा चैन गवा बैठे हाँ, सोची पए हाँ हुण की करिए, रिज्क सियासत इश्क कविता कुछ भी खालिस रहन न दिता, सारी खेड वंजा बैठे हाँ, दुध विच सिरका पा बैठे हाँ, सोची पए हाँ हुण की करिए, जी करदा सी वोटां पाइए, मार्शल ला तो जान छुटाइए, वोटां छोटां पा बैठे हाँ, ए जमहूरी रोला पा बैठे हाँ, किन्ने साल हंडा बैठे हाँ, सोची पए हाँ हुण की करिए, सोदा कोई पुछदा नाही, कोई रस्ता सुझदा नाही, रस्ते विच हुण आ बैठे हाँ, सोची पए हाँ हुण की करिए, पप्पू सानू तंग ना कर तू, बड़े जरूरी काम लगे हाँ, सोची पए हाँ हुण की करिए। इसके साथ ही सुनते हैं एक ये खूबसूरत सा गीत, मिलते हैं इस गीत के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
1: दिल में मोहब्बत है क्या, जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: हाँ जी, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल, उम्मीद पे दुनिया कायम है जी, ढूंढते रहिए, ज़रूर मिलेगी, लगे रहे वो अल्लाह के नाम पे। जनाब, इसके साथ ही टाइम हुआ चाहता है टाइम चेक का। टाइम चेक करते हैं और इसके बाद मुलाकात होती है।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जनाब, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां कह रही हैं कि हुआ चाहते हैं 12:46, यानी कि 46 मिनट पास्ट 12। हमारा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद हमारा फ्लैशबैक गीत। फ्लैशबैक गीत के बाद जनाब तारिक जुल्फी जी, मलिक इसहाक और मिसेज इसहाक के लिए जो गीत कहा था वो हमने ढूंढ लिया है। लेकिन पहले हमारा होगा फ्लैशबैक गीत, जो कि पुराना गीत है। उसके बाद, क्योंकि ये 90s का है, तो उसके बाद ये आपके लिए गीत प्ले किया जाएगा। लेकिन मैंने लाइन अप कर लिया है, इन्जॉय कीजिएगा। बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जाने, उसके बाद फ्लैशबैक।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
3: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
4: Have you noticed the way fans shout at football matches?
5: Oh, wake up!
4: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
6: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
7: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

वेलकम बैक सामाइन। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना। एक परदेसी दीवाना बन गया। सारे ऐसे थे परदेसी, हाँ वो सारे दीवाने बने बैठे हैं, क्या कीजिए। तारिक जुल्फी जी, आपकी तरफ से आपके तमाम दोस्तों और स्पेशली मिस्टर मलिक इसहाक एंड मिसेज इसहाक के नाम खूबसूरत सा गीत आपकी फरमाइश पर सुनिएगा। आप सब भी इंजॉय कीजिएगा, तमाम लिसनर्स के लिए भी।

0: Asian community, 24 hours a day. This is Sunrise Radio. On the hour, every hour. This is Sunrise Radio Network News.
1: Essex is now under control after spilled fertilizer ignited and exploded at the site yesterday. 20 firefighters were taken to hospital after battling the blaze near Rettigan. 3 fire engines and 2 officer cars were destroyed. Rick Hilton is chief fire officer for Essex.
2: Yesterday's incident presented exceptionally challenging and hazardous conditions. Our firefighters demonstrated remarkable professionalism, courage and commitment throughout the response. They continue to receive the welfare, well-being support they need.
1: Donald Trump says the media will be broke when he's no longer president, as there'll be nobody to report on. He pulled out a Trump 2028 cap at the White House correspondents' dinner, joking that he wants to run for another term. India's education minister stepped down after mass protests from the country's youth. His resignation comes after an alleged leak of examination papers. And letters written by a young Morrissey are expected to sell for £22,000 at auction. In one, he calls himself a genius, but nobody listened. That's the latest.
3: वेलकम बैक सामेन. खबरों के बाद दोबारा आपसे मुलाकात. थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो गया है, विच इज़ माय बैड. तो ऐसा है कि हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं. हमारे साथ मौजूद हैं शकील भाई बर्नी से. शकील भाई, आपकी कॉल मैं ऑन एयर लेती हूँ और उसके बाद हम हिट ऑफ द आवर की तरफ जाते हैं. हेलो हेलो
4: जी, सलाम अलैकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम. शकील भाई, कैसे हैं आप? आप ऑन एयर हैं?
4: ऑन एयर हूँ अभी.
3: जी, अभी आप ऑन एयर हैं क्योंकि अभी हमारी खबरें ख़त्म हुई हैं ना. तो अभी आपको तो जैसे मैंने ऐलान कर दिया था कि दोस्ती के बारे में बात करेंगे, तमाम लिसनर्स भी सुन लें कि दोस्ती के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आपके दोस्ती के बारे में क्या ख्याल हैं, क्या विचार हैं. आप कुछ कहना चाहेंगे?
4: या ठीक है, मैं कहूँगा कुछ.
3: जी ज़रूर.
4: या तो अभी ऑन एयर हूँ यहाँ पे.
3: जी, इस वक्त आप ऑन एयर हैं. बिल्कुल.
4: तो पहले तो तमाम सुनने वालों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम.
3: जी, वालेकुम अस्सलाम.
4: चौधरी मुजफ्फर साहब है, तारिक जुल्फी हैं, हमारे वाजिद भाई हैं, महबूब इलाही, चौधरी फैयाज साहब को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम. जितने सुनने वाले हैं तो सुन रहे हैं आप? ठीक है.
3: जी जी बिल्कुल. वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी आवाज़ आ रही है. जी
4: जी, दोस्ती जो है ना, असली दोस्ती एक पक्का और सच्चा जज्बा है.
3: बिल्कुल.
4: इसकी बुनियाद मोहब्बत और एतमाद पर है.
3: वाह.
4: दोस्ती के किरदार का इन्हिसार दोस्तों की तादाद पर होता है. जो आपके दोस्त होते हैं, इन लोगों के चंद दोस्त होते हैं, वो उन लोगों से बेहतर है जिनके बहुत से दोस्त होते हैं.
3: ये बहुत गहरी बात है. बिल्कुल.
4: क्योंकि चंद दोस्तों की दोस्ती ज्यादा दोस्तों की दोस्ती के निस्बत ज्यादा मजबूत और पायदार होती है. वो अच्छे तरीके से एक दूसरे को वक्त देते हैं, उनको पल पल की खबर रहती है.
3: जी,
4: इस साहब ने फरमाया था ना, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता. इसी तरह जो आपके दुश्मनों के साथ तल्लकात रखे, वो अभी आपका दोस्त नहीं हो सकता.
3: एग्जैक्टली.
4: क्योंकि दोस्ती के तीन तीन किस्म की दोस्ती होती है. एक जबानी.
3: जी
4: जबानी.
3: जी.
4: एक खानी, खाना.
3: अच्छा.
4: दोस्त वो एक जानी. असल में दोस्त जो होते हैं वो जानी होते
3: हैं. सही बात.
4: जी, जिसे आप जिगरी दोस्त भी कह सकते हैं.
3: परफेक्ट. जी बिल्कुल.
4: जिगरी दोस्त वो है जो किसी अच्छे काम में अपनी जान की कुर्बानी देकर भी आपका साथ दे. इसी तरह किसी बुरे काम में आपकी जान लेकर भी आपको रोके. इसलिए कहा जाता है दोस्ती नाम है कुर्बानी का.
3: सही.
4: तो अच्छे दोस्त की नसीहत लाजवाब होती है. कहते हैं दोस्त भाई से ज्यादा अक्लमंद होता है. क्योंकि भाई तो कुदरती तौर पर होता है, लेकिन दोस्त इंसान खुद बनाता है. अपने जहन के मुताबिक.
3: सही.
4: दोस्त भी अपने दोस्त के हर हाल से वाकिफ होता है और तमाम हालात को मद्देनजर रख कर ही कोई मशवरा देता है.
3: जी।
4: दोस्त अपने दोस्त के बुरे कामों से भी बाखबर होता है, वही उसे उन कामों से रोक सकता है या फिर किसी खतरे से बाखबर कर सकता है।
3: जी।
4: दोस्त खुशी में मजीद खुशी का बायस बनता है और परेशानी में परेशानी को दूर करने का बायस बनता है।
3: एग्जैक्टली।
4: वो सच्ची और पायदार दोस्ती के लिए जरूरी है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए कुर्बानी का जज्बा रखता हो।
3: जी।
4: उसके लिए दिलचस्पी रखता हो, बर्दाश्त और उसकी सूझबूझ रखता हो और वफादारी रखता हो।
3: सही।
4: इसके बगैर दोस्ती का सवाल ही पैदा नहीं होता।
3: परफेक्ट।
4: देखिए, दोस्ती एक नाजुक और नरम लतीफ पौधा है जिसको अगर खुश अखलाकी और गर्मजोशी की कमी, खुद गर्जी, लापरवाही और संग दिली की अवाबी इस पौधे को लग जाए तो ये पौधा मुरझाता ही नहीं बल्कि खत्म ही हो जाता है।
3: बिल्कुल।
4: जैसा आपका माहौल होगा आपको दोस्त भी वैसे ही मिलेंगे।
3: यानी कि दोस्तों में हमारा अपना रिफ्लेक्शन होता है।
4: दोस्ती के इंतखाब का कोई पैमाना नहीं, लेकिन उम्र गुजरने के साथ साथ आपको पता चलता रहता है कि कौन दोस्त है और कौन अच्छा दोस्त है और कौन बेहतरीन दोस्त है।
3: वाह।
4: लेकिन फिर भी हम उम्र हो, हम दर्जा हो, ईमानदार हो, खुद गर्ज ना हो, अक्लमंद हो, राजदार हो, कुर्बानी का जज्बा रखता हो, बाखलाक हो, मगरूर ना हो, लालच ना हो और सबसे बढ़कर वफादार हो।
3: एग्जैक्टली।
4: देखे, दोस्त हमेशा अपने से बेहतर बनाओ।
3: अच्छा।
4: बेहतर दोस्त बनाओगे तो खुद भी बेहतर हो जाओगे।
3: सही।
4: अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें अच्छे दोस्त की तलाश है मगर वो खुद को अच्छा नहीं बनाते। अगर खुद को अच्छा बना लें तो तब भी अच्छे दोस्त नसीब होंगे।
3: जी बिल्कुल।
4: क्योंकि अगर ये दोस्ती खूनी रिश्ता नहीं है और ना ही है तो गुमान का रिश्ता है, मगर फिर भी उन रिश्तों से मजबूत और पायदार होता है।
3: जी बिल्कुल।
4: अगर दोस्त अच्छा मिल जाए तो दोस्ती निभाने की कोशिश करनी चाहिए। एक दफा दोस्ती में दरार आ जाए तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। रिश्ता दोबारा तो जुड़ जा सकता है मगर साबित नहीं रह सकता।
3: सही बात। बहुत कमाल बातें की आपने, बहुत कमाल।
4: ये असल जो चीज है ना, वो हमें दोस्त बनाना नहीं बल्कि बनना होता है।
3: और दोस्ती निभाना होता है
4: या दोस्त बनना होता है।
3: बिल्कुल।
4: तो फिर हमारे अंदर कुर्बानी और दूसरों के लिए ये जज्बा पैदा होगा, मोहब्बत का और एतमाद का।
3: बहुत खूबसूरत बातें की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई, थैंक यू सो मच।
4: ओके।
3: बहुत खूबसूरत आगाज टॉपिक का, वेल डन, थैंक यू। जी सामीन, ये तो हमारे थे कॉलर हमारे साथ शकील भाई बर्नली से, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातें की दोस्ती के बारे में और हमारे इस टॉपिक को, बल्कि इस टॉपिक को बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया। यानी कि ये वाला हमारा आवर है डिस्कशन आवर और इसमें हम डिस्कशन करेंगे दोस्ती के बारे में। यास्मीन बहन, आपकी कॉल आ रही थी लेकिन उस वक्त हम कॉल पर थे शकील भाई के साथ। आप अब मैं हिट ऑफ द आवर गीत प्ले करूंगी। हिट ऑफ द आवर गीत के बाद आप प्लीज़ ज़रूर मुझे कॉल कर लीजिएगा तो फिर हम ऑन एयर बात करेंगे। एक दफ़ा फिर से बताती चलूँ कि ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सनराइज़ रेडियो पर। मैं हूँ आपकी मेजबान नाहिद चट्टा जी। सनराइज रेडियो 100.6 एफएम और 103.2 एफएम पर आप अक्रॉस द वेस्ट यॉर्कशायर सुनते हैं। डैब पर जनाब आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, कीतली में, इल्कली में, स्किप्टन में, लीड्स में, हैलिफैक्स में, मैनचेस्टर में, ईस्ट लंकाशायर में, यानी के ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एकरिंगटन एंड मिल्टन कीन्स में। डाबी में भी जनाब हम बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप इन सारे चैनल्स पर नहीं सुन पा रहे किसी भी वजह से तो आप बिला झिझक ऑनलाइन जाइए और हमारी वेबसाइट्स जो हैं एप्पल ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से, वेबसाइट्स www.sunriseradio.fm या फिर www.sunrise.radio पर आप हमें सुन सकते हैं 24/7 आपके साथ, आपका अपना सनराइज रेडियो। जी हाँ, बढ़ते हैं हिट ऑफ द आवर गीत की जानिब, उसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, हमारे साथ रहिएगा।
0: सनराइज रेडियो
5: Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. A Sunrise Radio hit of the hour.

0: जी हाँ, दोस्तों में कोई बात रह जाती है। क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत गीत हमने सुना जी। ये तो था हमारा हिट ऑफ द आवर गीत। हम ऐसा करते हैं कि टाइम चेक कर लेते हैं, उसके बाद हमारा कमर्शियल ब्रेक।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 1:15, यानी कि 1:15, यानी कि 1:15 भी कह सकते हैं। बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब, मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के उस पार।
2: On Sunrise Radio.
3: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303, दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
5: Sheffield Miller CIC in association with Eventmaster International presents DesiFest Sheffield Miller 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August 2026 from 12 till 8 p.m. for the biggest South Asian festival in South Yorkshire. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Miller shopping featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Meet Sandu, Summer Blake, Sasovan Sarkar, Dolls Royce, Roma Dance, and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there. Hosted by Sunrise Radio's Amit Soda. Radio partner, Sunrise Radio.

0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। सामीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारी कॉलर यास्मीन साहिबा। यास्मीन, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो?
1: जी,
0: वालेकुम अस्सलाम जी। यास्मीन, आप ऑन एयर हैं, आप दोस्ती के बारे में बात करना चाहेंगी?
1: जी इंशाल्लाह। मैं सबसे पहले तो मेरी तरफ से सब सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: और मैं उन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने बशकील साहब ने इतने इतने प्यारे अल्फाजात में मेरे हाल से दोस्ती के हवाले से वो पॉइंट ऑफ व्यू उठाया कि मैं इसके लिए ना मेरे पास अल्फाज नहीं, समझे, इतनी प्यारी बातें की ना।
0: वाकई उन्होंने हर बात बहुत खूबसूरत की, बहुत खूबसूरत,
1: बहुत ही ज्यादा प्यारी बातें की हैं। तो दोस्ती के हवाले से, दोस्ती तो एक मुकद्दस रिश्ता है। मैं यही कहती हूँ कि दोस्ती एक मुकद्दस रिश्ता है।
0: जी बिल्कुल,
1: ठीक है। अगर उसको समझा जाए तो पाए तक मेल तक लेके जाए तो बहुत ही प्यारा रिश्ता मेरे ख्याल से। इससे कुछ होते हैं ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जब बंदा भाई भाई बहनों का तो खून का रिश्ता होता है, ठीक है, वो तो ऑलरेडी हमदर्दी होती है उनमें, ठीक है ना। तो उसके हवाले से तो बार दफा ये होता है कि दोस्ती के हवाले से कि कोई बात ऐसी भी होती है जो बंदा ना अपने भाई या बहन से नहीं कर सकता ना, लेकिन दोस्त से शेयर कर सकता है। दोस्ती ऐसा रिश्ता होता है कि उससे बंदा हर दिल की बात शेयर कर लेता है।
0: बिल्कुल,
1: तो उसके हवाले से मेरे ख्याल से मेन चीज ये है कि दोस्त जो होता है, दोस्त में ये नहीं है कि अल्लाह के हर बंदे में बहुत खूबियां पाई जाती हैं, बहुत ही ज्यादा खूबियां पाई जाती हैं। तो मेन चीज है कुछ जहाँ खूबियां होती हैं वहाँ कुछ खामियां भी होती हैं लोगों में, ठीक है। तो मेन चीज ये है कि रिश्ता वो होता है जिससे बंदा दोस्ती करता है ना, उसकी खाली खूबियां ना देखी जाए। मेरे ख्याल से उसकी खूबियों के साथ उसको खूबियां देखकर और उसको खामियों समेत अपनाया जाए, मेन चीज ये होती है।
0: हाँ, ये तो है। हम समझते हैं कि हम अपना जो दोस्त है वो हमारा सिर्फ ऐसा हो जिसमें खूबियां ही खूबियां हों, और उसकी कोई खामी नजर आ जाए तो फिर वो हमें बुरा लगने लग जाता है। लेकिन खूबियों और खामियों समेत, क्योंकि 10 out of 10 आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, आपको आप खुद भी 10 out of 10 नहीं है, है ना। बिल्कुल सही बात आपने की है कि उसकी खामियों समेत हमें दोस्त को अपनाना चाहिए। बिल्कुल
1: अपनाना चाहिए। तो मेन चीज है कि जहाँ पे आपको कोई उसकी बात बुरी लगती है तो अगर आप राइट हैं तो आप उसको समझाएं, इंशाल्लाह वो आपकी बात को सॉर्ट आउट करेगा, वो जरूर समझेगा अगर वो आपका जिगरी दोस्त है तो।
0: हाँ।
1: इसी तरह अगर आप में कोई खामी उसको नजर आती है तो वो भी आपको समझा सकता है, ठीक है ना, तो राय रास पे ला सकता है। ऐसे ही दोस्ती चलती है। दोस्ती इसी को कहते हैं कि अगर किसी में खूबियां हैं तो कुछ ना कुछ खामियां भी हैं, ठीक है ना, तो उसको खामियों समेत अपनाया जाए, उसको राय रास्ते पे लाने की कोशिश की जाए। अगर वो भटक रहा है तो उसको अगर हमदर्दी है आपको उसके साथ तो वो उसको राय रास्ते पे लाए, ठीक है। अगर आप में कोई खामी है तो वो भी आपको राय रास्ते पे लाने की कोशिश करे, ठीक है ना। इसी तरह होता है दोस्त तो मुकद्दस रिश्ता होता है। दोस्त के बारे में आपने ये भी सुना होगा कि कहते हैं कि जब हम मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे तो कोई रिश्ता मिले या ना मिले, लेकिन जो अच्छा दोस्त है ना वो हमेशा मिलेगा।
0: है सच में? ये तो मुझे नहीं पता था।
1: ये भी मैंने सुना है कि जो अच्छा दोस्त होता है, मुखलिस दोस्त होता है, वो आपको अलाव होगा वहाँ पे, वो आपको जरूर मिलेगा।
0: अरे वाह
1: जी। तो ऐसा है कि दोस्त तो एक बार बात है कि पाकीज़ा रिश्ता है और इसको मेरे ख्याल से बनाते तो बहुत लोग हैं, दोस्त तो बनते भी बहुत ज्यादा हैं, बनाते भी बहुत हैं, लेकिन मजा तो तब है कि उसको तो पाया तक मेल तक लेके जाए।
0: हाँ, दोस्ती को निभाया जाए, दोस्ती निभाई जाए। बिल्कुल सही बात है।
1: ये अगर बिल्कुल कुछ लोग ऐसे करते हैं ना कि अगर उसका दोस्त कहीं ना कहीं कमजोर है, पैसे उनकी मदद नहीं हो सकती या कुछ ऐसा है, वीक नजर आता है, तो हम लोग बार दफा जो अमीर होते हैं ना वो फील करते हैं कि ये हमारा दोस्त जरूर था लेकिन गरीब है, इसको पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। हम पैसे वाले हैं तो हमारी कहीं ना कहीं बेइज्जती ना हो जाए कि ये इतना गरीब दोस्त है हमारा, लेकिन नहीं, उसका उसके सीने में भी दिल है, वो भी जाहिर सी बात है वही तो जज्बा रखता है। दोस्ती का अगर जज्बा रखता है तो जाहिर सी बात है उसको आप साथ लेके चले ना, मजा तो तभी है, चाहे गुर्बत है चाहे हमारत है, कुछ भी है, वो तो अल्लाह की देन है। अगर कहते हैं कि अच्छा वक्त है ना तो बुरे की उम्मीद जरूर रखें, ठीक है ना। कभी ना कभी हर बंदे पे वो वक्त लाजमी आता है, जवाल लाजमी आता है, और अगर आप पे जवाल चल रहा है तो इंशाल्लाह कभी ना कभी अच्छा वक्त भी आएगा, उसकी उम्मीद जरूर रखें, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेहवाज है, ठीक है ना, वो सब पे यकसां तौर पे बरसती है। इसलिए कहते हैं कि दोस्ती एक पाकीज़ा जज्बा है, तो मैं तो इसी इसके हवाले से कहती हूँ कि बहन भाइयों से भी बढ़ के दोस्ती का रिश्ता होता है। अगर
0: मैं इस बात को बिल्कुल आपको इस बात को सेकंड करूंगी यास्मीन आपकी बात को, कि वाकई क्योंकि बहन भाई होते हैं, हमारा खून का रिश्ता होता है, वो इनको कहते हैं, इनको एक और नाम भी दिया जाता है, जबरी रिश्ते, जो हमारे लिए बना दिए गए हैं, हमें नहीं, हमने चूज नहीं किए हैं वो, और जो हमने चुने होते हैं रिश्ते वो होते हैं दोस्ती का रिश्ता। तो जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं, बहन या भाई होते हैं, हमारी बहुत दफ़ा उनसे तबीयतें अलग होती हैं, हमारा उनसे जो हमारा टेम्परामेंट है उनसे मैच नहीं करता, हमारी पसंद नापसंद उनसे मैच नहीं करती, लेकिन हम एक घर में रहते हैं, एक माँ बाप की औलाद हैं, और हमें एक साथ हम अच्छे तरीके से रहें तो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये लाजिम नहीं है कि हम उनके साथ बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हों। और क्योंकि दोस्त जो होता है वो इंसान खुद चुनता है अपनी तबीयत के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक, और जैसा बंदे की नेचर है उसके मुताबिक। मेरे दोस्त मेरे जैसे हैं, मेरे बहन भाई मेरे जैसे नहीं हैं।
1: बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो दोस्त ऐसी बात है, दोस्त हमेशा वही होता है जो हर आपको अच्छे वक्त में भी आपके साथ खड़ा रहे, और कोई अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदे पे बुरा वक्त भी आ सकता है तब भी वो आपके साथ खड़ा रहे।
0: बिल्कुल सही, बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपने, बहुत शुक्रिया यास्मीन, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, अल्लाह हाफिज़। जी सामीन, ये तो थी हमारे साथ यास्मीन, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातें की दोस्ती के हवाले से। आपकी भी टेलीफोन कॉल्स का इंतज़ार है, आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं स्टूडियो में 01274-3066666 पर। अगर आप दोस्ती के बारे में कोई अच्छा या बुरा वाक्या भी बताना चाहें, या फिर आप कोई ऐसी बात भी बताना चाहें जो कि ना खुशगवार भी तो होती है दोस्ती में, जैसे कि वो शेर है कि ज़माने में अजल से ये दस्तूर ठहरा है कि जिससे दोस्ती होगी उसी से दुश्मनी होगी। तो जो दोस्त होते हैं और बाद में दुश्मन बन जाते हैं, ये भी बड़ी, बहुत ही बड़ी भयानक चीज़ होती है ज़िंदगी की, और बहुत मुश्किल वक्त होता है। अगर आप कोई दोस्ती के बारे में बात करना चाहें तो आप हमें स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं 01274-3066666 पर। इसी दौरान ये गीत सुनते हैं।

0: जी हाँ, दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम, सबको सलाम। जी साहब, ये तो आपने गीत सुना दोस्ती के हवाले से। अगला जो गीत होगा वो हमारा होगा स्ट्रेट हमारी कमर्शियल ब्रेक के बाद, यारा तेरी यारी के लिए, वफा जी आपके और सायरा जी आप दोनों के लिए, आप दोनों के नाम आपकी फरमाइश पर ये गीत तमाम सुनने वालों के लिए भी। जी हाँ, स्ट्रेट आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक हम ये गीत सुनेंगे। बढ़ते हैं अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो। सनराइज
1: रेडियो। बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: The Manchester Mega Mela is back on Saturday 1st and Sunday 2nd of August at Platfields Park, Rochow, Manchester, from 12 noon till 9 p.m. on both days, featuring performances by B2, Apna Sangeet, Summer Blake, Ramit Sandhu, Lemba Husseinpuri, Circus Raj, Rajasthan Brass Band, Zahir Abbas Kawal and Party, Hobajan Dalwar, Roach Killer, and many more artists. Main stage hosted by Sunrise Radio with a fun fair, kite flying, henna and face painting, children's corner, Asian bazaar and Asian food. Free entry for the whole family. TV partner B4U Music, radio partner Sunrise Radio.

कार पे वक्त पड़े तो परखा जाता

जी हाँ जनाब, ये तो आपने गीत सुना, यारा तेरी यारी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दोस्ती पर। जी दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत जज्बा है, बल्कि जो होते हैं ना कि जो आपका चारा साज होता है दोस्त, आपका गम गुसार होता है दोस्त। दोस्त के बारे में या दोस्ती के बारे में अगर आप कुछ अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो ज़रूर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 01274-306666 पर। 306666 पर फ़ोन कीजिएगा और दोस्ती के बारे में बात कीजिएगा। नसीब अच्छा हो तो नफ़रत का दरिया भी रुक जाता है मेरे दोस्त, तेरे जैसा दोस्त हो तो ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। दुनिया लाख रुकावट बनाए दोस्ती में, अगर दोस्त अच्छा हो तो ज़माना बदल जाता है। क्या ख्याल है? ऐसा ही है, एक और गीत सुनते हैं।

0: सबसे पहले तो इस माहौल में या इस दौर में सबसे अच्छा दोस्त मिलना ही बहुत मुश्किल है. क्योंकि दोस्ती का रिश्ता, जैसे मोहतरमा फरमा रही थी और मतलब शेर साहब फरमा रहे थे कि दोस्ती का रिश्ता होता है एतबार का. सबसे बड़ी चीज होती है एतबार, और उसके पे पूरा यानी कि बंदा मुतमिन हो कि ये बंदा दोस्ती के काबिल है. कैसे पता चलेगा कि ये बंदा मेरी दोस्ती काबिल है या नहीं. लेकिन पहले वो जैसे फरमा रहे थे ना कि पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आपको लोग बोले कि ये बंदा दोस्ती काबिल है.
1: हाँ, कि मैं इसका दोस्त हूँ, बनो. बिल्कुल.
0: इंसान बड़ा है तो अपनी सोच की वजह से, शरीफ है तो अपने बोल की वजह से, काबिल एहतराम आपकी है तो अपने अमल की वजह से.
1: बिल्कुल.
0: और अपने दोस्त से कभी बदगुमान नहीं होना चाहिए.
1: बिल्कुल नहीं.
0: क्योंकि जिस पर बदगुमानी गालब आ जाती है ना, वो खुद अपने और अपने दोस्त के दरमियान सुलह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता. फिर सुलह की कोई गुंजाइश रहती नहीं आपकी जी. ऐसे
1: सही बात है.
0: और दोस्त इज्जतदार दोस्त होना चाहिए.
1: बिल्कुल.
0: बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया दोस्त का हाथ, कामयाबी पर बजने वाली वो तालियों से भी अफजल होता है और कीमती.
1: कमाल बात की है, खूबसूरत बात की है. वाह, बहुत अच्छी.
0: तो मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि दोस्त के साथ उस निम्न की तरह रहो, खाने में दिखाई नहीं देता लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है.
1: हाँ, मजा भी नहीं आता. वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब.
0: तो
1: कमाल बात
0: की. मैं कीमती वक्त आपका, मेरे ख्याल में टाइम बहुत ज्यादा ले गया हूँ. तो मैं मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान, किसी बंदे ने पूछा कि या अली सरकार, दोस्तों और रिश्तेदार में या भाई में क्या फर्क है. ठीक है. तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दोस्त हीरा है, ठीक है, और भाई सोना है.
1: अच्छा.
0: तो सहल ने सवाल किया, या मौला मुश्किल तुशा, कि आपने ये कैसी मिसाल, हालांकि हीरा कीमती होता है, आपके भाई का खून का रिश्ता होता है तो भाई कीमती होना चाहिए. तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुनो, जो भाई होता है ना, जो सोना होता है ना, वो उसको चेंज करके, उसको पिघला कर उसको दोबारा उस शेप में लाया जा सकता है. हीरा जो होता है ना, हीरे में एक दफा भी शाक की दरार पार जाए ना, एक दफे भी टूट जाए ना, तो हीरा दोबारा उस सिमत में दोबारा नहीं आ सकता.
1: वाह, बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात.
0: क्योंकि दो भाई में कई दफा लड़ाइयां झगड़े कई दफा हो जाते हैं, ठीक है, दोबारा फिर सुलह भी हो सकती है, माँ बाप भी बीच में आ जाते हैं और भी रिश्तेदार आ जाते हैं. लेकिन दोस्ती की ऐसी एक कहते ना एतमाद का रिश्ता होता है कि जो कभी भी एक दफा जो टूट जाए ना, दोबारा फिर वो नहीं जुड़ सकता.
1: बहुत अच्छी बात है आपने की, बहुत शुक्रिया. नहीं नहीं, कोई बात नहीं.
0: बहुत याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे.
1: आमीन. आपको भी. ठीक है, बहुत शुक्रिया जी. जजाकल्ला. थैंक यू वेरी मच जी. सामिन, ये तो थे हमारे बहुत ही अच्छे कॉलर चौधरी रुखसार भाई. हमेशा बहुत अच्छी बातें करते हैं आके, और वाकई दोस्ती के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे कोटेशंस बयान किए. यही बात होती है, हर बंदे की बात में एक अपना रंग होता है. जनाब, टाइम हो चुका है टाइम चेक का, और उसके बाद हमारा फ्लैशबैक गीत और जो हमारी है कमर्शियल ब्रेक, उसका सुनते हैं सबसे पहले टाइम चेक.
2: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
1: इस वक्त हुआ चाहते हैं हमारी स्टूडियो की घड़ियों में 1:46, यानी कि 1:46. बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जाने. ब्रेक के फौरन बाद आप सुनिएगा हमारा फ्लैशबैक गीत, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है. सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो.
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Have you noticed the way fans shout at football matches?
6: Oh, wake up!
5: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently. At radiocentre.org.
7: It's It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

जी समीन वेलकम बैक दोस्तों, तुम सबको ये शाम मुबारक हो। जी हाँ दोस्त, सबको अपने दोस्तों की नज़र से ही, प्यार भरी नज़र से ही देखना चाहिए और दोस्त फिर उसके बाद उनमें से बेहतरीन वाला चुन लेना चाहिए। कहते हैं ना कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर का कहना है, तुम्हारे हर दर्द की दवा तुम्हारे पुराने दोस्त हैं। अपने पुराने स्कूल कॉलेज के दोस्तों से रिश्ता रखा करो। ये वो हकीम है जो अल्फाज से इलाज कर देते हैं, उम्र की चादर खींच कर उतार देते हैं। ये कमबख्त दोस्त कभी बूढ़ा नहीं होने देते। वाकई ये कमबख्त दोस्त कभी बूढ़ा नहीं होने देते। बच्चे वसीयत पूछते हैं, रिश्ते हैसियत पूछते हैं, लेकिन वो दोस्त ही हैं जो आपसे आपकी खैरियत पूछते हैं। ये गीत सुनिएगा।

0: जी सामीन, हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे कॉलर मौजूद हैं जनाब ज़हूर इलाही जी। ज़हूर इलाही साहब भी दोस्ती के बारे में बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई।
1: वालेकुम सलाम मेरी बहन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं दोस्ती के लिहाज से ये बात करूंगा कि मेरा भतीजा जो फौत हो गया था तकरीबन पिछले हफ्ते को, खत्म शरीफ था, तो उस पर मेरी मुलाकात होगी। मेरा एक दोस्त है कराची से।
0: अच्छा,
1: तो वो 50 साल की मेरी उसके साथ दोस्ती थी।
0: वाह।
1: When we were young,
0: right?
1: And वो अचानक मुझे मिल गया, तो वहाँ हमने बैठ कर वो जो है मौलवियों के साथ दुआ मांगी, फिर वो जो है खत्म खाया, और फिर अचानक उसने कहा यार एक सेल्फी बनाते हैं।
0: अच्छा।
1: तो वो सेल्फी बनाई और वो मैंने दोस्ती के लिहाज से मैंने वो जो है टिकटॉक पर डाल दी।
0: अच्छा।
1: तो वहां से मुझे इतने व्यूज मिले कि आप अंदाजा ही नहीं कर सकते, 1000।
0: क्या बात है।
1: तो सोचने वाली बात ये है, जब कोई पुराना दोस्त हो ना,
0: हाँ जी,
1: तो वो आपको अचानक मिल जाए, तो फिर बड़ी खुशी होती है।
0: ये बात तो है। दोस्त
1: 20-25 साल वो मेरी नजरों के से दूर रहा।
0: अच्छा।
1: तो अचानक वो मुझे मिला, तो वो मुझे बड़ी खुशी हुई। कहता यार तू तो मेरा 50 साल का दोस्त था, तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई है। मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा दिन गुजरा है कि एक तो हम यहाँ बैठ कर एक खत्म शरीफ खा रहे हैं, और दूसरा हम दुआ मांग रहे हैं, और इसके अलावा जो है हम जो है गट्ठे बैठ कर एक दूसरे से मुलाकात हो गई है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात।
1: सुल्तान महमूद जो है वो बड़े मशहूर है यहाँ, वो पाकिस्तान में ड्रामों में भी काम करते हैं।
0: अच्छा।
1: और यहाँ बर्तानिया में वो तकरीबन 50 साल से ज्यादा है यहाँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: और वो एक बहुत बड़ी अच्छी शख्सियत है, और तकमा इम्तियाज है पाकिस्तान में।
0: अरे वाह।
1: तो यकीन करें कि मुझे बड़ी खुशी हुई है उनसे मिलकर।
0: क्या बात है, यही तो बात है, दोस्तों से मिलके जो खुशी होती है वो अलग ही किस्म की खुशी होती है।
1: जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो आज आपसे बात हो गई है तकरीबन, मेरा ख्याल है 2-3 महीने के बाद ही हुई है।
0: हाँ जी, काफी देर बाद आपकी कॉल आई है। हाँ जी।
1: तो आप कोई मेरे लिए कोई अच्छा सा गाना आपनी अपनी पसंद की तरफ से।
0: मसला ये है कि हाँ, अब वो मैं नेक्स्ट वीक ही लगा पाऊंगी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम खत्म होने में तकरीबन 2 मिनट रह गए हैं।
1: चलो ठीक है, बहुत
0: बहुत शुक्रिया आपकी टेलीफोन कॉल का, और बहुत अच्छा लगा ये आपने जो बात अनोखी बात की है, बहुत अच्छी बात की है। जी जरूर, बहुत शुक्रिया ज़हूर अली, ज़हूर अली जी, अल्लाह हाफिज़। जी सामीन, वाकई पुराने दोस्तों से मुलाकात हो जाए तो क्या ही बात है, और ज़हूर अली भाई की कॉल से ही, उन आवाज़ से ही पता चल रहा था कि वो कितने खुश हुए अपने पुराने दोस्त से मिलकर। तो एक और बात भी कहना चाहूँगी प्रोग्राम के आखिर में, लाजिम नहीं हयात में अहबाब का हजूम, मिल जाए वफादार तो एक शख्स बहुत है ना। वफादार होना चाहिए दोस्त, अगर एक वफादार दोस्त मिल जाए तो वही बहुत है, इतने ज़्यादा हजूम की ज़रूरत ही नहीं है। तो समीन, इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तकरीबन प्रोग्राम एंड होने वाला है। आप सबकी टेलीफोन कॉल्स भरपूर रहीं, बहुत ज़्यादा बिजी रही, यानी कि एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि मुझे न्यूज़ चलाने में और उसका न्यूज़ का जिंगल प्ले करने में ओवरलैपिंग हो गई, और वो म्यूज़िक भी साथ चल रहा था, वो सब कुछ चल रहा था, यानी कि आपकी टेलीफोन कॉल्स ने मुझे इतना बिज़ी रखा। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरा इतने अच्छे तरीके से साथ निभाया, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम मुझे लगा आप सबकी मौजूदगी की वजह से। उम्मीद है आपने भी पसंद किया होगा, इन्जॉय किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को आपसे मुलाकात होगी ठीक 11 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो, आपके साथ 24/7 हमेशा हमेशा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।
2: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
3: Center 2 with than 200,000 people in France and Spain have been forced to flee rapidly spreading wildfires. Spanish Prime Minister Pedro Sanchez has warned although a change in wind direction has helped firefighters who are battling flames spreading near Madrid, conditions may suddenly change. In France, meanwhile, people have been evacuated from homes in the suburbs of Bordeaux. Regional official there, Sophie Broca, says significant help is on its way.
4: This fire that we've been living with and fighting against here in Gironde for 3 days has reached an unprecedented magnitude. To combat it, we will receive extremely significant national reinforcements.
3: Meanwhile here, residents in a village in the Cairngorms say a raging wildfire has left them upset, angry and frustrated. Hundreds of residents have been moved out of Nethy Bridge after evacuation orders were issued. Smoke is now thought to be blowing towards Aberdeenshire in the North Sea. Kinley Francis owns a tour company in Orkney.
5: We could see the smoke 4.5, maybe 5 miles away from where we are. It is significant, the impact that it's had on the area. This is something of a, it looks like an apocalyptic scale. I just hope that the government can do their best to help these people up here.
3: A murder investigation started in Luton after a 17-year-old boy was stabbed to death. Police say it followed reports of disorder in the town yesterday. Two people have been arrested. Protesters from India's so-called cockroach youth movement have agreed to end their demonstrations. The announcement comes hours after the education minister there resigned. Heatwave conditions are returning for parts of England and Wales this coming week. Temperatures are expected to peak at 35 degrees Celsius in some parts. And Sean McCann, the younger brother of missing Madeline, has booked his place in the final of the 400 metres freestyle at the Commonwealth Games. The Team Scotland swimmer was cheered on by his parents and sister Amelie in Glasgow. That's the latest. I'm Ruth McKee.

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: ਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
3: ਓਹੋ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ।
2: ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ?
3: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਓਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਟੈਲੀਫੋਨ 0127-4885-935।

0: छेड़े।
1: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
3: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735 043.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-21-21 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014। सोफी ज्वेलर्स।
2: The Manchester Mega Mela is back on Saturday 1st and Sunday 2nd of August at Platfields Park, Rusholme, Manchester from 12 noon till 9 p.m. on both days, featuring performances by B2, Apna Sangeet, Summer Blake, Ramit Sandhu, Lemba Husseinpuri, Circus Raj, Rajasthan Brass Band, Zahir Abbas, Kawal and Party, Hobajan Dalwar, Roach Killer and many more artists. Main stage hosted by Sunrise Radio with a fun fair, kite flying, henna and face painting, children's corner, Asian bazaar and Asian food. Free entry for the whole family. TV partner B4U Music, radio partner Sunrise Radio.

0: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: Official media partner, Sunrise Radio.
3: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? Sunrise Radio के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Sheffield Mela CIC in association with Eventmaster International presents DesiFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August 2026 from 12 till 8 p.m. for the biggest South Asian festival in South Yorkshire. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mela shopping featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandu, Summer Blake, Sasovan Sarkar, Dolls Royce, Roma Dance, and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there. Hosted by Sunrise Radio's Amit Soda. Radio partner, Sunrise Radio.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Have you noticed the way fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 01274735043.

0: शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Sheffield Miller CIC in association with Event Master International presents DesiFest Sheffield Miller 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August 2026 from 12 till 8pm for the biggest South Asian festival in South Yorkshire. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Miller shopping featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandu, Summer Blake, Sasovan Sarkar, Dolls Royce, Roma Dance, and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there. Hosted by Sunrise Radio's Amit Soda. Radio partner, Sunrise Radio.

भाई सूट पहन

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735 043.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

0: सिर्फ दो पौंडा कनस लाने ना एक पौंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है जे तुसा पुराना सुना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
0: चाचा ज्वेलर्स ओकलैंड ब्रेफर 9 टेलीफोन 01274488935
2: Have you noticed the way fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Sheffield Miller CIC in association with Eventmaster International presents DeciFest Sheffield Miller 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August 2026 from 12 till 8pm for the biggest South Asian festival in South Yorkshire. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Miller shopping featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake, Sasovan Sarkar, Dolls Royce, Roma Dance, and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there. Hosted by Sunrise Radio's Amit Soda. Radio partner, Sunrise Radio.
1: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 दैट्स ब्रैडफोर्ड 7230300

0: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।
1: Have you noticed the way fans shout at football matches?
2: Oh, wake up!
1: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: कुल्ला नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 दास ब्रेडफोर्ड 7230300।

0: Sheffield Miller CIC in association with Eventmaster International presents DeciFest Sheffield Miller 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August 2026 from 12 till 8 p.m. for the biggest South Asian festival in South Yorkshire. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Miller shopping featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake, Sasovan Sarkar, Dolls Royce, Roma Dance, and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there. Hosted by Sunrise Radio's Amit Soda. Radio partner, Sunrise Radio.
1: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 दास ब्रेडफोर्ड 7230300

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Have you noticed the way fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303

0: Hey yo, we back. Mentor Richie Rich. Just a siddle. Play your head and step off.
1: कहाँ से?
2: क्या मालूम?
3: Who the hell is he?
1: कौन था वो जेलो आवे न पारे न कहने कारों नहीं पार?

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

शुरू। और तू अगे का तो तुरे आना, थोड़ा पिछे के बैठ, थोड़ा पिछे। हाँ हाँ हाँ शाबाश, ठीक है ठीक है। हाँ जी आओ जी। जदों किसे आशिक दी मशूक खा के मुंडे को मिठिया मिठिया जलेबियां करके मुंडे की जेब खाली ते बिना दसे बारला जहाज बह जाती है ते ओ

0: Music.
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रेडफोर्ड 723030।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश कर लगे हां पंजाब दिया फोक बोलियां।